0: मन मान पुछ रे दिल गिर पिछले दिल गिर पिछले आईने के दामे खमले फजियाम यारा खुब देता फजियाम दोस्ता खुब देता सर वक्त आवले ले अमल मन मन मन मन मान पुछ रे
1: मान मान कुचरे अमान मान कुचरे तब कोला ना चंबरे तब कोला ना चंबरे वक्त